करथारा दास जान दे हाथी उबारो हमरे सब बैरियां संगहारो प्रिथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बिद नाना।

सगल समगरी तुम रह सूत्र धारी तुम ते हो सो तुमरी गद मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दयावें ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जरा नाम जपिया वंड के छकिया दे चलाई ते नवाही देख के अमृठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां सवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी।

0: सतगुरु जी का कोटान कोटान शुक्राना है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अपार बख्शिश की है। सतगुरु जी ने अपने दर घर के कीर्तन की सेवा ली है। आप समूह संगतों का धन्यवाद। तकरीबन एक महीने तो आप संगतों की सेवा की है कीर्तन के राही। दो दिन का समा होर बाकी है, सो आप संगतों के चरणों से बेनती है जी, बढ़ चढ़ के गुरु घर हाजरियाँ भरो, गुरु की बाणी दे लाहे प्राप्त करो जी, भुल चुक की खिमा असीस बख्शिश करो, फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, शाम के सजे हुए दीवान में आप संगतों नूं कीर्तन श्रवण करवा रहे सन। सत्कारयोग रागी भाई पिंदर सिंह जी, हजूरी रागी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब वाले समूह जथेदार, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण आप संगतां नूं गुर इतिहास ढाडी वारा श्रवण करवा रहे हैं। सत्कारयोग ज्ञानी पूर्ण सिंह जी अरसी अते उन्हां दा ढाडी जथा बड़े प्यार नाल श्रवण करिए जी। कल शाम दे दीवान जो 9 बजे तो बाद रैन सभाई कीर्तन होने हैं, एतवार नूं महान शहीदी समागम सिंघां दी याद विच होने हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांग मोक कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तुद्यागर।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुकम तुम्हारा तख्त निवासी

सुतमीतनाभाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय। जय महाभयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुना चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पाप पर हर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख रेरे। सगल सठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आगावे। जे मार्गे जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहिला। ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गद पाई। छूटत नहीं गोड़ लग बाही नाम जपत पार पराही।

करे भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिय एक बार नौखंड पृथ्वी फिराचर जीव मां उदास तपी सर थी वह

ये तो समझे पूरा का बिशन पद गावे गुंग जतन करे तावी सुर भंग कै पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तुहावस गवन करतार करुणा में दीन मेहनती करे नानक तिमरी कृपा तरै।

रहत अवर कशवर कमावत मानई प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेखना काहू पीर अवर विदेशे आवना करे आवत जावत जनमै बरज केन्द्र बसेन्द्र अंकार तिसकी सीख तरा संसार जो तुम भाने तिन तिन तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पुराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे मानै

अष्टपदी जय प्रसाद शति अमृत खाहे तुष्ट ठाकुर को रखमन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद वसे सुख मंदर तसे ध्याए सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्यागत ब्रलुभावे जय प्रसाद सुख से जय सोई जय मनाठ पहर ताका जस गावि जय जय प्रसाद तु सब कहु माने मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरु रहता धर्मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म प्राप जी जब दुर्गे मान पावे नानक पत सेती कर जावे।

पलायन साहसंग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नई कशकाल दर्शन भेट धोत निहाल साधक संग कलुकत हराय साधक संग नरक पर रह साधक संग इहा उहा सुवेला साधसंग मिछरत मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साधरत बसे नान कुदर सा सुंदर साय साधक संग सुनु वर नाओ साधसंग हर के गुण गाओ साधक संग ना मंते बिसरा साधसंग सर पर निस्तराय साधक संग लगे बुरा मीठा साधु कै संग घट घटीठा सा संग भया गया गारी सा संगत भई हमारी

जनकोए कारगिर बांदर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र कौतारे सर्वरों का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितना पाइय धर्म नानक तिस मिलाए जल के

ब्रह्म के रंग। जैसी माते तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। सलो उस्त करहे अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना परब्रजी, बाबिद अनक प्रकार अष्टपति। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बान भ्रमे उदासी, कई गुड़ वेद के स्रोते, कई गुड़ तपीसर होते, कई गुड़ आत्म ध्यान धारे, कई गुड़ गपगाप विचारे, कई गुड़ नवतन नाम ध्यावे, नानक करते कांत ना पावे, कई गुड़ भय अभिमानी, कई गुड़ अंध ज्ञानी, कई गुड़ गिरबन कठोर, कई गुड़ अभिगातम निकोर, कई गुड़ पर दर्भ को हिरे, कई गुड़ पर दुख ना करे, कई गुड़ माया श्रम माहे, कई गुड़ प्रदेश प्रमाहे, जित जित लाभो तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई गुड़ सिद्ध जति जोगी, कई गुड़ राजे रस भोगी, कई गुड़ पंखी सर्ब पाए, कई गुड़ पाथर बिर खर जाए, कई गुड़ पवन पाणी बह संदर, कई गुड़ देश भूमंडल, कई गुड़ ससियर सूर नक्षत्र, कई गुड़ देव दानव इंद्र शेर शत्र, सगल समग्री अपने सूतारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई गुड़ राजस्थाम सत, कई गुड़ वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई गुड़ किए रतन समुद, कई गुड़ नाना प्रकार जन, कई गुड़ किए चिर जीवे, कई गुड़ गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई गुड़ जखे किनर पिसाज, कई गुड़ भूत प्रे सूकर मिर्गाच, सबते नेराय सब हूं ते दूर, नानका पिलप त्रया भरपूर, कई गुड़ पा ताल के वासी, कई गुड़ नरक स्वर्ग निवासी, कई गुड़ जन्मे जीवे परे, कई गुड़ बहु जूनी फिरे, कई गुड़ बैठती खाए, कई गुड़ घाले थक पाए, कई गुड़

कैगुण दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ विनाश। कई गुण मांगे सत्संग पार ब्रह्म दिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक त्वे जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होया अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार। कई बार पसरियो बासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट की ने बापांत प्रभ ते ब्रह्मा हे समात। ताका अंत ना जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास। तिनो अवतात अंबरगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे। कई को नाम रस विवे अमर पय ससदी जीवे कई को नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे। अपने जन को सा सा समारे नानक है परमेश्वर के प्यारे सलोक। करन कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक दिस बल हारण है जल थल बही अल सोहे। अष्टपदी करन करावन करने जोग ज्योत सुभावे सुई होग खिन में थाप थापन हारा अंत नहीं किश पारा बारा हुक्मे तार अधर हावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे।

इसका बालना सहाद करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तस भावे सोई फंथियो। कबू ऊच नीच में वसे कबू सोख हरंग हरंग हसे कबू नेंद चिंद व्यवहार कबू ऊ कबू नेंद चिंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक मिलावन हार। कबू नृत करे बाबा कबू सोए रहे दिन रात कबू महाक्रोध विकराल।

सपतयाब जाने बलवंत खन में जाय बसमंत किसे नपतयाब अहंकारी धर्मराय करे खुवारी गुरप्रसाद जागर मिटे बमान सोजन नानक दरगे परवान ओट कर्म करे हूं तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनुग तपस्या करे अहंकार नरक सुर के फिर फिर अवतार अनुग जतन कर आत्म नहीं दरवाजर दरगे को कैसे घवाए आपस को जो भला कह आवे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख ना ही कोए जब जाने मैं किश करता तबला गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे गो बैरी मी तबलग रे चल ना ही चीत जबलग मोह मगन संग माए तबलग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन।

मरे नमसे आवे ना जाए नानक सदी रहया समाय आप उपदेशा समझे आप आपे रजा सबके साथ आपकी नो अपन विस्तार सब काश उसका वो करने यार उसते उसते पेन कहा हो किशोय थान धनंतर एका सोय अपने चलताव करने हार कवता करे रंग आभार मन में आवन अपने माहे नान कीमत गह ना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद करें बखियानी सच सच।

संत सरण जो जन पर सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। राष्ट्रपति संत के दुख ने आर जा घटे, संत के दुख ने जमते नहीं छुटे, संत के दुख ने सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख ने शोभा ते ही इन संत के, संत का दुखन मत होए मलिन, संत का दुखन शोभा ते ही इन संत के, हाथे को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपार कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भी तर, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन का जो रव, संतन के दुख सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिक जोन किरपाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलाय, संत के दुखन सबको शलाय, संत का दुखन ते सब जाए, संत का दुखन नीच नी जाए, संत दुखी का थाम को राहे, नारंग संत पावेता ओए भी गत पाहे, संत का नंदक महात ताई, संत का नंदक घंट करना पाई, संत का नंदक महात्यारा, संत का नंदक परमेश्वर बारा, संत का नंदक राज ते ही, संत का नंदक दुखी आरती ना,

ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक का मन प्रति, ठाकुर के सेवक निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम गारंग, सेवको प्रपालनारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक दया प्रभु धारे नानक, सो सेवक सास सास मारे, अपने जन का प्रदा ढाके अपने सेवक की, सर्व राखे अपने दास को, दे बढ़ाई अपने सेवक को, नाम जपाई अपने सेवक की, आपद राखे दा की गदमित कोई ना राखे, प्रभु के सेवक को कोना पहुँचाए, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया, निकी गिरी मैं कल राखे भस्म करे, लश्कर कोट लाके उसका सासना गाढ़ त्याप ठाकुर राख देख रहा हाथ, मानस जतन करत बात उसके करता बिरथे जात, मारे ना राखे वरना कोहे, सर्व जिया का राखा सोए, काय सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ राख बिडाणी, बार बार बार प्रभ जपिए पिए, अमृत मंत्र पिया है, नाम रतन जन गुरमुख पाया, तिशाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम राजो जंद्र बदाने, मंत्र नामे नाम समाने, उठत बैठ सोबत नाम, कहो नानक जन कह सदकाम, बुल्लो जा जेबा दिन रात, प्रभने जन कीनी दात, करे भगत आत्म कह चाहे, प्रभने स्यो रहे समाये, जो होवा होव सो जाने, प्रभने का उपश हुकम पछाने, तिसकी वहमा कौन मखानो, तिसका गुण का एक ना जानो, आठ पैर पर बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओटले, मंत्र अपना तिन तिन जन देहे, जिंजन अपना प्रभु पछाता, सोजन सर्व थोका दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अमर सयान में सगली शाड़, तिजन की तू सेवा लाग, आवन जानो मुई तेरा नानक, तिजन के पूजो सत पैरा सरोक, सतपुर जिन जाने सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग से कुदरा नानक हर गुण गाओ, अष्टपति सतगुर सिखी करा प्रतपाल, सेवा को गुरु सदा दयाल, सिखी गुर दुर मत मल हरा, गुर बचनी हर नाम उचरा, सतगुर सिखे बंधन घट है, गुरु का सिख विकार ते हट है, सतगुर सिखो नाम धन दे, गुरु का सिख बुढ़भागी है, सतगुर सिखा हालत पल सवारे, नानक सतगुर सिखो जी नाल समार, गुरु का ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सया, गुरु कर कशना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचा सतगुर के पास, ते सेवक के कारज राज, सेवा कर तुए ने कामी, तिसकोत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा से आप करे नानक, सो सेवक गुरु की मतले, बीस विश्वे गुरु का मन बारे, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर हृदय और नाम उनके बार, गुरु को बल जाओ, सर्वधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एक एक आप नहीं कश परम सह सियान बनया, ना जाइए नानक ऐसा गुरु बड़भागी पाइये, सबल दर्शन बेगत पुनीत, परसद चरणगत निर्मल रीत, भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे, सुनकर बचन करन आगा ने मन संतो का, तम पतिया ने पूरा गुरु रखे जाका, मंत्र अमृत दृष्ट रखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव तिसलाए मिलाए, जेबाए कुछ सतनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक, काहू बौलना पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत गिने ना पाई, अनक भगत बंधन करे चरण कमल, हृदय सिमरे सदबलिहारी, सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हरस पावे जन कोई अमृत पीवे।

राष्ट्रपति संदनामिल करो विचार एक सिमर नाम आधार पाप समीत विसारो चरण कमल हृदय में उतार करण कान सो प्रभ सम्राट दृढ़कर गहो राम अरवते तन संजो भगवान संदना का निर्मल मंत एकाश राखो मन माहे सर्वरोग नानक बिट जाहे जिस तन को चार कुंट उड़ता में सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को हृदय बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत ये शोभा को करे भली करनी सा शोभा बजर की सरणी अनुगुबावी रोग ना जाए रोग मिटे हर वक्त लाए सर्व निधान मेर नाम निधान जप नानक दरगे परवान मन प्रबुद्ध हर के नाय दैद सावते आवा ठाए तागो बिघन ना लागे गोए जागे हृदय बसे हर सोए गल ताती ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख भाव पवन से पूर्ण हो आस भगत पाया तम बरगा सतकर जाए बसे बिनासी कहो नानक काटी जम फांसी ताद विचार गहे जन साचा जन्म रसो गाचो गाचा आवा गमन मिटे प्रभ सेवा त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का उदार हार हर सिम प्राण आधार अनुक भावना छुट नारे सिमर सा सवेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंचत नानक फल पाए संगला चाल तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत गुटम अर बंत ते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार अंते कहो गमन छुटकार आशास्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ बा सारी जिंदी है तस बजे ना बेगाना नाम मिसार नार पिछताना गुरकी मातू ले या

नगापे प्रजा बष्टपति दबकारे काशना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाता बैर ब्रो के संगमात जब इसका वर्ण चेना जाब हर सो कहो किसे व्यापत जब आपने आप आपार ब्रह्म तम हो का किसो ब्रह्म आपन खेला भरतीजा नान करने हारना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बांध भगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत रह तब गमन ने डर गमन कत डराए आपन जलताव करणे हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपने आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब गौन छुटे गौन बंधन बाधे अपने आप आपिय चर्जा नानक अपन रूप आपिय प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता है तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन मोक्ष तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय

अपन खेल आवकर देखे खेल संकोचे तो नानक एका जब अभगत भगत आप जब सरे पासार संत प्रताप दो भाग अपे धन्युन की शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे आनंद जो जे आपे रस भोग अंदर जोग।

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे आपे एक आप विस्तार जात सुभावित सट उपाए अपने भाणे ले समाए तुम ते फिर नहीं किशोए अपन सो सब जगत परोए जागो प्रभु जीव आप बुझाए सच राम सोए जन पाए सो समदर्शी तत् गाबेता नानक।

अष्टपदे पूरे गुरुका सुनपदेश पारब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरा चंद आसन त्यागो तरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेन्ती कर हो सांग अगम सागर तर हो हर तरंगे बरले हो पंडार नान गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सांग पाज परमानंद नर्क निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जागे रंग अने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंगार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के वचन अमलीक लाल ए रतन सुंत कमावत होत उदार आप तरे लोके निस्तार।

विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शनान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मा सगल देवदास सुंदर चतुर्दत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने इवन धान जपै मन कोवे सब जुग में तागी गत हुए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतान केवल हर नाम गोबिंद भगत गय मन विश्राम कोट पराध सा संग मिटाए

तीर्थ नावा जे तिस पावा विन भाणे के नाय करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी।

गोविंद आख ईश्वरे आख सिद्ध आख केते कीते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ताख न सक है के ही के

रतन संबंध केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानके अंत नायंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड़े आनंद

जाप श्री मुख वाक पात साहि दसवीं शापै शांत वै प्रसाद चक्र चिहन अरबरन जात अरपात नहन जेह रूप रंगर रेख पेह को कह ना सकत केह अचाल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज कहिजय कोड इंद्र इंद्राण साहे सहान गनिजय।

ने नमो रोग रोगे नमतंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो ईष्ट ईष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वनाशी अनूपे रूपे सदा सचिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे रूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रिद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता।

श्री शांतवय प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग निर्नामे कामे पजांग प्रयात शांद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता।

चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्याय चतर चक्र दान्याय चाचरी छंद ना सत्तर है ना मित्र है ना परमंग ना पितर है ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्तर है ना मित्र है परे है पवित्र है

है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, परपुक्त प्रभा है, सुजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदीन रूप है, समास्तो पराज है, सदा सर्वसार है,

मान मलैया गाड़े गिड़ अणके तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सबको हर नायक जाज कनेक सवेक देवैया दानव देव फरेंदन साचर भूत भवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप तपेंगे था।

पठाए, साचै सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी।

दोई कुदरत साजी करा संठो चाव दाता करता है आप तुम तो सदैव करी पसाव तो जाना भी सबसे दिला से जिंद गवाओ कार्यासन डिठो चाव कार्यासन डिठो चाव।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे शब्द फिजाय। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नि दया में ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी वाहिगुरु। पंजा प्यारिया चौहा साहबजादिया चालिया मुक्तियां हठिया जपिया तपिया। जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृठ कीता। तिना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान तरके बोलना जी। जिना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए। खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए। गुरुद्वारिया की सेवा लई कुरबानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी सिदके सांसवासा संग निभाया। तिना समूह शहीदा की कमाई का ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियाय। देग देग फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मानने वा मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दा दान। प्यारे खालसा जी नूं बख्शो निमाणिया दे माम नेताणिया दे ताम नेओटिया दी ओटने आसरिया दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ आप जी दे हजूर उदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मन होके दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेल तो आप जी की पावन हजूरी विच सुखनी साहब जी दे पाठ पंज बाणियां दे नेतने मासा जी दी वार दे कीर्तन होए। उपरंत आप जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा गुरमत विचारा छेव पौड़ियां आनंद साहब का जाप होया है। कृपा करने जी समुचियां सेवावां निभाउंदिया होया भुल चुक दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां। दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी। परिवार में सुख शांति कारोबार में वादे करने जेलां में बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी। अपने प्यारे खालसा पंथ की चढ़दी कला करनी। आप जीआं दे भाणे विच रहण सुखां नाल बतीत होई है। आया दिन आप दे भाणे विच बाणी पढ़दे आ सेवा करदे आ बतीत होवे। सच्चे पातशाह दर करदे सेवादार भाई अजय सिंह वालों सच्चे पातशाह जी जन्म दिन ते शुकराना करदे अरदास बेनती है। कृपा करनी जी गुरमत अनुसार मनोकामना पूरिया करनी। अपने दर कर दया सेवावां दे नाल निवाजना अमृत वेले की संभाल बख्शनी। इस वेले बख्शिया खजानिया विचों कड़ाह प्रसाद दी देग सज के हाजिर है। करी पाक साल सोच पवित्रा लाभ भोग हरराज। आप जी का सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। श्री मुख बाग दी बख्शिश करो सही प्यारे मेल। जिन्हें मिले आम दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल के तब चलायो पंथ। सब सिखण को हुक्म है

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

नालस्पति रमैया के गुण चेत पराने कौन मोलते कौन दिताने जिनतो साज सुवार स्वीकारया गर्भ गण में जिने उभारया बार वस्त तुझे प्यारा दूध परदोबन भोजन सुसूद बिरद प्याओ पर स्वाग सैन मुख प्याओ बैठ को डैन एहो नेर गुण गुण कछु न बुझे बक्सले तो नानी सि जय दे प्रसाद तरह पर सुख बसै सुत प्राथमित बनता संगा स्वाय जय प्रताप ही में से तल जला सुखदाई पवन पाव कमला जय प्रताप गय सब रसा सगत सुमगरे संग साथ बसा दीने अस्त पाप करने ते रचना तिज त्यागवर संग रचना से दो करुणांत व्यापे नानक काल लो प्रभ आपे आदंत जो रख नारद सो प्रीतन करे गुवार जाके सेवा नरद पावे ता सो मुड़ा मन निलावे जो ठाकर सचदा हजूरे ता को अंधा जात दूरे जाके डाल पावे दरगा मान तब सारा मुगदे जान सदा सदा पूर्ण हार नानक राख न्यार पार तुम त्या कौटे संग रच साच छोड़ झूठ संग मचाए जो चरण सुवस्त्र कर मान जो मन सो दूर फरान छोड़ जाए सुसका शर्म करे संग साहे तिस पर हरे चंदन ले पतारे तो कर तीत भसम संग हो अंध को मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लो प्रभ दयाल करतूत बसु की मान जा लोग बेचारा करे दिनाल बार पे खंतर मल माया छब स नाही कद करे छुपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्याप लोभ सुहान अंतर अगन बार तन स्वावगल पात्र कैसे दरिया था जाके अंतर वसै प्रभाप नान तेजन सह सुमा सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गए ले ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोर निष्कय तो समझे पोरा का बचन बुध का भय गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आप सुगवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानी तुमरी कृपा तर संग साई सुहावे न चीत जो बहराय तो सुप्रीत बलवा के

नानक राख लो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पे अरदास जी अपन सब तेरी राह तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत चेत ऊचा भगवंत सकल समग्री तुम रसो तरतारी तुम तय सो आज्ञाकारी तुमरे कत में तुम्हें जाने नानक दास सदा कुर्बानी सो लोग

प्रभु कृपते हो प्रकाश प्रभु दयाते कमन विकास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दयाते मत उत्तम हो श्रमधान प्रभु तेरी मैं आप गजुन के नू लाया जेत जेत लाभ तेत लगा हरनाथ नानक किन कह कछु न हाथ श्रोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुनमिता नानक ब्रह्मता साधना की आचार्य कथा स्पदी स्वाद के संगमुख जल हो तो सात संग मन सुख लिखो तो साग संग मिटे अभिमान साग संग प्रगटाय सो ज्ञान साग संग जय प्रभु नेरा सात संग सवोतन बेरा साग संग पाए नाम रतन साग संग एक ऊपर जतन साध के मामा बने कौन पराने नाने साके शोभा ब्रह्मा सुमाने साग संगा गोचर मिलाए साग संग सदा पर फुलाए साध के संगा बस पंचा सात संग वृतरस पंचा सात संग सबके रहन साग संग मनोहर बहन साग संग न कर तू तावे सात संगा सच मन पावे

महान। ब्रह्म ज्ञानी उत मन पुनः सप्ते निचा ब्रह्म ज्ञानी सृजन पय नानी जन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरे नाथ राज ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना ब्रह्म ज्ञानी के सब प्रमाया ब्रह्म ज्ञान गज बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टम व्रत बर्षी।

ब्रह्मज्ञानी के गरीब सुमाहा ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्मज्ञानी लतावट बंदा ब्रह्मज्ञानी क्या हुए सुफला ब्रह्मज्ञानी सुफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदारणा ने ब्रह्मज्ञानी जपाय सगल संसार ब्रह्मज्ञानी क्या के रंग ब्रह्मज्ञानी क्या वसै प्रभसंग ब्रह्मज्ञानी के नाम अदार ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजाग ब्रह्मज्ञानी ओ बंते आग ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सोच निवास नानी ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संगता ब्रह्मज्ञानी के वचन ब्रह्मज्ञानी का निर्मन ब्रह्मज्ञानी जस कर प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ परता ब्रह्मज्ञानी का दसवट बाकी पाइय ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानी ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाये ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा देश ब्रह्मज्ञानी का गति न जाया दाकर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखान ब्रह्मज्ञानी की गल ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानी ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सा जीवन मरता ब्रह्मज्ञानी मुगो जग जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब उपरहाथ ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार ब्रह्मज्ञानी आम निरंकार ब्रह्मज्ञानी के सब ब्रह्मज्ञानी बने नानी ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उतार जो अंतर नाम सर्व में पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सुगल सुतार है अस्पति मिथ्या नाई रसना परस मन में प्रेम निरंजन दर्श परतरा रूप न बेख नेत्र संग हेत कर्ण सुन काव की निंदा शब्द जाने आप उसको मंदा गुरु प्रसाद क्या पर रहे मन की वासना मन तय ठरा है इंद्र जत पंदो ते रहत नान कोट मदे कुसा परस बै सुनो सो जिसो परसो प्रसन्न विष्णु की माया तो पैन कर्म कर तो अन्य कर्म तुवासन का निर्मल धर्म काव बल के छाने वाचय केवल भगत कीर्तन संग राचय मान तन सिमरन गोपाल सब प्रभु कृपाल आप दृढ़ अपना नाम जपावे नानक वैसन परम गत पावे भगवती भगवान भगत का रंग सगल त्याग दुष्का संग मंत्र सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सासंग पाप अमृत हो वै तुझ भगवती की मति उत्तम हो वै भगवंत की डर कर नित नीत मंत्र नरपय विष्णु परीत हर के तन हृदय बसावे नानक भगवती भगवंत को पावे सुपंडित मन प्रभु दे राम नाम आत्म शुद्ध राम राम सर रस विवेस्पण के उपदेश जग दिवे अर्की कथा हृदय बसावे सुपंड प्रजो नावे भेद प्राण स्मृत बुझे मूल सुखम जन सूल तो वर्णा को दे उपदेश नानक सुपंड को सदा देश बीज मंत्र सर्वो ज्ञान चो वर्ण में जप को नाम जो जो जप की गो सास पावे जन को कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र को तारा सर्वरो काव खुद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काव जगत गते न पाइय धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिसके मन पाल ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास सातम राम तिस नद्रिया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट अरदान सो दादर का परवान अपने दास को आप कृपा करे तक सब सो जी पराय सगल संग आत्म उदास अस जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जिम सोग का हावै तैसर तसव सोग सदानंत नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैस माटे तसमर तस विखाटे तसमान तसा विमान तसा रंग तसा रजान जो वर्ता ऐसा है जुगत नानक ऊपर कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सलेठाऊ जत जत कर राखा तैसा दृढ़ाओ आपे गण ग्रामन जो प्रभाव सोई बन हो पत्र आपन अंतरंग लखन जाय पार ब्रह्म कै रंग लखे न जाय पार ब्रह्म के रंग जैसे मध्य सप्रगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पह निहाल सलोक
Ustatakarane kajano antana paravaro nanakarachana pravraje bhava anakaparkar astpadi kai korto epajari kai korto char bivari kai korto patirthavasi kai korto man paramayodasi kai korto vedke srote kai korto tapisrote kai korto atantyantara kai korto kavkabha vichara kai korto navtanamtyame nanakarta kantana pavaya Kai koda bhavimani, kai koda andagani, kai koda kripani kotora, kai koda bhagatamne kora, kai koda paradarva koira, kai koda paradukhana kare, kai koda maya sarmai, kai koda parade pramai, jet jet lava, tetta lagana, nanakarte gejane karta ratana, kai koda jet jet jogi, kai koda rajaras poki, kai koda pankisarva pai, kai koda pathar, birikanivadai, kai koda panapani basantar, kai koda despumandar, kai koda sasir, sunakatar, kai koda devadan, under serichatar, sakasamagri apanesutar, nanak jesa, jesa pave, tesa, tesanesare, kai koda rajatamasata, kai koda bed, pran simirtar sasa, Kai kod kia ratna samanda, kai kod nana prakara janta, kai kod kia charjiva, kai kod grima swaranthiva, kai kod

तत्तान त्रिभुव नया वह अंतर हो ज्ञान प्रकाश हो स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम हृदय करंग सदा वसा पार ब्रह्म के संग जो जन्म जलाय कटाना त्यों ज्योति संग जो सुमान मिट्टी के गुण पाए विश्राम नानक प्रभु के सद कुर्बान स्वरूप।

मन को गर्भ गलेहस्पति जिसके अंदर राज अभिमान है सो नरपति स्वान जो जन्म जो बनवंत सो वत विचाका जंत आप कर्म का वह जन्म रो जोन परमावे तान भूमिका जो कराय गुमान सो मूर्खा ज्ञान कर गर्भ जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक्या मुक्ता का सुख पावे धनवंता वे कर गर्भावे तृत मन का संग न जावे बहुलस क्रमान कुबर करे आसो परम पितरता का विनाश सब त्यो आपो जाने बलवंत कर्म दाय पशुवंत किसी न बदे आप करे तरम राय करे खुआरी गुरु प्रसाद का मिटे मान सो जन्ना ने दरगा परवान कोट कर्म करे हो तारे शरम पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म इंद्र वह हर दरगा को कैसे गवे आपस को जो पला खावे तिसे पलाय निक नाव सर्व के रेंद्या का मन हो नाने तंके निर्मल सोये जब रजाने मुझे कचोए सब को सुखनाई कोये

नाम रंग सर्व तो को एपड़ बागी के से प्राप्त होए कर्ण कराम ने आपे आप सदा सदा नान कर जाओ कर्ण कराम करने हर के आज कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे जैसा होए आपे आप आप सोए जोग कन्नो स्वप्न रंग सब ते दूर सब के संग बुझे देखे करे वे का पै अनेक मरण बिन से आवे न जाए नान सदी रहा सुमाए आप जैसे समझे आप आपे रत्या सबके साथ आप किनो अपन विचार सब कुछ उसका करने हार उस बहन को भी सोए था तनंतर क्या सोए अपने चलता करने हार को तो रंग करे अपार मन में आप मन अपने माए नानक की मत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद के ने वख्यानी सच सच सच सब के न कोट मद के न बिरले जिना भला भला भला तेरा रूप सुंदर या पार या रूप निर्मल निर्मल निर्मल तरी बाणी कट कट सुनि सर्वन वख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रिय स्वरूप

निचाय संतो के कहता हूँ कुनाए नाने सुन पावे ताऊ बेगत पाए सुन कनंद कुमात ताई सुन कनंद कंटे कन्ना पाई

नहीं मैं तो संगत के गोडन लागे संगत के को सोता गए संगत के महाकारे संगत के सदा विकारे संगत के जन्म भर संगत के न सुख तय ठहराए संगत के को नाय ठाओ नान सुन पावे तले मिलाए संगत के भी टूट रहे संगत के कद काज न पहुंचे संगत के को ध्यान परमाइए संगत के उजड़ पाइए संत का दुखे अंदर ते तोता ज्यों साथ बिना मृत के लोता संत के दुख के जड़ के चनाए अपन विद्या पे ही खाए संत के दुख का वन रखनार नान संत पावे तन ले बार संत के दुख के बल लाए ज्यों जाल बेहून मछली तड़पड़ाई संत के दुख की भूखा निरादे ज्यों पाव के दन नहीं त्रापाए संत के दुख की चुटिया केला ज्यों बुआर तिलके तुम्हें दोहेला संगत दुखी धर्म तेरा तो संगत दुख समित्या कहत कीर्तन देखा तुरी पया नान ज्योत पाव सोई थिया संगत दुखी बिगड़ रूप जाए संगत दुखी को दरगा मिले सजाए संगत दुखी सुधा स्वकाइय संगत दुखी ना मरे ना जी भाइय संगत दुखी की पूजे न आसा संगत दुखी चले निराशा संगत दुख ना तुचा कोई जैसा भावे तैसा कोई होए पिया कीर्तन मिटे गोये नानक जाने सच्चा सोए सब करते करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु।

मन की टेक बिरथी सबजान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रहा गाय बन न लागे आए मारे राखे को मन के सुनाई हाथ तिसका हुकुम बोझ कोय तिसका नाम कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रसोए नानी बिघन लागे कोई तुस्मर में कांदनकार करवन मेरे साथ व्यवहार निर्मल रचना अमृत प्रिय सदा सुहेला कर ले दियो नैनो पे ठाकुर का रंग सा सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिया हरबिंद।

कर्मान जोगित करा सुप्रभ कह रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हो वै सोए करने हर पचान सोए प्रभु कह के जन मिट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिससे जैत समाय।

प्राणी गुरु चरण लगत निस्तराय जीवन कर दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हो विकास जो महा उद्यान में मारे पावे तुम साधु संग दूध प्रगटावे।

है। जय शिव कर कोलैन तुआया राम नाम संतर कर पाया तज माले मन मोर राम नाम हृदय में तोल राध खे संता संजाल वृद्या विख्या जंजाल तन तन खै सब को मुख जलर दरगा सोय एहो व्यापार विरला व्यापार है नानक तंका सतपर हरे चन था के तो पियो और साग अपना जियो साग तुर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान सास और पागे पाइय सा संगर कीर्तन गाइए।

परस्वान्नस्पति अविनाशी ब्रह्मन मेरा आत्मान केतु प्रत्याग तस्ते पर सर्व निरंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गैर सुजानना

स्नाम चुण में जाको प्रभाय जनम रह प्रया विदय ऊच नित के स्थान दस नवे दस नान गिदार नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कर एक रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ न सिय कंकार नाना चलत कर माय पूर्व पूर्व सब ठाए नाना विद कर बंत बनाए अपनी कीमत आपे पाई।

बोलो जजे बाजन रात प्रभु ने जन की दात करा भगता तुम क्या चाहे प्रभु ने सोरा सुमाए जो हुआ वस्तु जाने प्रभु ने का हुक्म पहचान जिसकी महिमा कौन बखाने हो जिसका गुण कह के न जाने हो आठ पैर प्रवस्था जो रखा उन्होंने सही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मंत ने अपना तिन जन दे।

मोह माया के संग न ले पो मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगास है नाने परम दुख नानक परम दुख तय तेना से तब तुम्हें ठंड बरताई आनंद व्या दुख नाठे पाए जन्मन के मिटे देश साधु के पूर्ण प्रदेश पहुंचो का निरपो है बसे सकल व्या मंत्र खै न सै जिसका

जाचक जन जाचा प्रवधान कर कृपा देवर नाम साधना के मंगतुर पार ब्रह्म श्रद्धापुर सदा सदा प्रज्ञा गंगाव सावचरण कमल सोला गया प्रीत भगत करो प्रभु के नित नीत कोटे को आदान नान मे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टि सुखो पाय बिरला को जन चा कैसे जन त्रवता ने पूर्ण पुरख ने डोला ने सो भर परे प्रेम रस रंग उपजा चाव सार कै संग पर शरणान सब त्याग अंतर पर गाग बुढ़पागी जप्या प्रसोए नानक नाम रत सुखोय शिव की मनसा पूरी पे सतगुर ते निर्मल मत लय जन को प्रभ हो दयाल शिव कि नु सदा निहाल बंधन काट मुग जन पया जन मरण दुख भ्रम गया पुण्य श्रद्धा सतु पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिला ए नान भक्ति नाम समाये सुख मिश्र कान पाने सुख मिश्र की आ जाने सुख मिश्र जिन सब के दिया सुख मिश्र दे जीवन दिया सुख मिश्र दे अग्न में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरा जे विगते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर पूरे तत् ए

नेत्रों पेख दरस कोय मन बिकसा सा चरण तोय भगजना के मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बाजी जे कर्मया गुरु प्रसाद नाम जप लाया ताकि उमा कह न जाए नारग्रह सर्वसमय प्रभक संदीन दयाल भगत सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत व्रतपाल।

अवतारे जब नरगण प्रभु साहब सब आए तब सब जगत को गिदाए तब आपे आप अपने ज्योतर तब कवन डर कमन कद डरे आपने चलता करने हार नारे ठाकुर का मुया पार बिना शिशु के आपन आसन तय जनमन कहो का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की तरह कहो के सोए जब अभिगत गोचर प्रवेखा तब चित्र गुप्त कद पूछ लेखा जब नाथ निरंजन गोत्र गा दे तब कौन छुटकन बंदर बाधे अपन आपे चरदा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्वपुरख पुरख पत होता तब मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंका निर्वाण तय कौन गुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छद लगत को किस जय ज्योत स्वरूप ज्योत संग समाव जय के सब कवन द्रवताव करण करावन करने हारो नानक करते का न सुमारो जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई

पहाड़ दुख सुख मान अपमान नानक प्रकार के अभ्यान अपन के लाभ कर देखा खेल संकोच नानक एक भगत आप जय पसरा पसार संत प्रताप।

द्रौपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर के उतरे चंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना के धुर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सा संगन सागर तरो

स्वनंद कराय प्रभु गात जाय प्रगट गोपाल महात के माथ नानक उदरतन के साथ है शरण जो सुनसरण आए कर कृपा बरा मिलाए मिट गए बैर पै सब रेन अमृत नाम साहब संग लैन सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण सेव की सेवा जंजाल विकार ते रहते राम नाम संरचना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारे नानक ने भी खेप हमारी प्रभु की उच्चतर

0: का नाम जपत होए सुखिया,
1: ला करोरी बंद नाम परे,
0: हर का नाम जपत ने सरे,
1: अनक माया रंग तीख नाम बुझावे,
0: हर का नाम जपत गावे,
1: जय मार्ग ए जात अकेला,
0: तै हर नाम संग होत सहेला,
1: ऐसा नामन सदा त्याइये,
0: नान गुरमुख परम गत पाइये,
1: छूटत नहीं कोट लख बाही,
0: नाम जपत पार प्राही।

0: दासत पीसर जीवे
1: अगन माए होमत प्राण
0: कनकासर है वर भूम दान
1: न्योली कर्म करे बो आसन
0: जय मार संजमत साधन
1: निमक निमक कर सीर कटावे
0: कभी हमें मैल न जावे
1: हर के नाम संसार कछ नाहे
0: नान गुरमुख नाम जपत गत पाए
1: मन कामना तीरथ दे छुटे
0: गर्भ मानना मनते हुटे।

0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: सात संग दुर मत मल हिरिया
1: सगल उद्दम में उद्दम पला
0: हर का नाम जपो जी सदा
1: सगल बानी में अमृत बानी
0: हर को जा सुन रस

0: गुण गुण कछु न बूझे,
1: बख्श लियो तो नानक सीजे।
0: जय प्रसाद तर ऊपर सुख बसे,
1: सत बनात मनीत बनंता संग हसे।
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला,
1: सुखदाई पवन पाव कमला।
0: जय प्रसाद पोगे सब रसा,
1: सगल समग्री संग साथ बसा।
0: दिने हस्त पाव करने तरसना,
1: जैसे त्याग अगर संग रचना।

0: तिसको सिमरत परम गत पावे,
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: तिसे त्याए सदा मन अंदर,
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पै सिमरो तिस रसना,
1: जय प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्याए त्यावन जोग,
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे,
0: तिसे त्याकत अवर लभावे,
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय,
0: मन आठ पै ता का जस गावजिए,
1: जय प्रसाद तू सबको मान,
0: मुखता को जस रसन बखाने,
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म,
0: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म,
1: प्रभ जी जबत दरगे मान पावे,
0: नानक पासे ती कर जाए,
1: जय प्रसाद अरु कंचन देही,
0: लेवला वो तिस नाम स्नेही,
1: जय प्रसाद तेरा ओला रहत,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके,
0: मन सरनी प्रभ ठाकर प्रभ ताके,
1: जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे,
0: मन सा सिमरो प्रभु।

0: अस्वहस्त असवारी
1: मन जिस प्रभ को कबु नाम सारी
0: जय प्रसाद बाग मिलग तना
1: राग प्रोई प्रभ अपने मन
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठत बैठ सत से त्याई
0: से त्याई जो एका लख
1: इहा उहा नानक तेरी रखे
0: जय प्रसाद करे पुन बोदान
1: मन आठ पैर का तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद को चार व्यवहारी
1: तिस प्रभ को सास सास सितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमरो सदा रूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जाग
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पात्र है
1: और प्रसाद नान

0: वसना
1: जय प्रसाद हस्त कर चले
0: जय प्रसाद सुपूर्ण फले
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू प्रगट संसार
0: तिस प्रभु को मूल।

0: साध की शोभा ब्रह्माए समानी,
1: साध के संग गोचर मिले,
0: साध के संग सदा पर फूले,
1: साध के संग आवे बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस पंचा,
1: साध संग

0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन भेटत होत निहाल
1: साध के संग कलु खत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहा उहा सुहेला
0: साध संग बिचरत हर मिला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साध के संग ना बिरथा जावे
1: बार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक उतरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर

0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर भया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की देश अमृत बरसी।

0: पास प्रेत मुखत पाथर को तारे
1: सर भरो का ओखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत किते ना पाइये धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतर पाई तन पाया
1: सदा निकट निकट

0: कोड पवन पाणी बै संतर
1: कई को देश भू मंडल
0: कई कोड शशि और सूर नखतर
1: कई को देव दानव इंद्र सिर शतर
0: सगल समगरी अपने सूत तार
1: नानक जिस जिस पावे तिस संसारे
0: कई कोड राजस्थान सातक
1: कई कोड वेद प्राण सिमरत अर सासत
0: कई कोड किए रतन समुंद।

0: पद में सो जनगत पाए।
1: रूप सत जाका सत स्थान,
0: गुरख सत केवल प्रधान,
1: करतूत सत सत जाकी बाणी,
0: सत पुरख सरमाए समाणी,
1: सत कर्म जाके

0: के पूर्ण उपदेशे
1: पहुँच का निरपा हो बसे
0: सगल ज्ञान मन ठीक है नसे
1: जिसका साथ है कृपा तहरी
0: सा संग जप नाम मरारी
1: चैत पाए चुके परम

0: तत तत तोई जिस सेवत मन आलस करै जिस विसरे एक निमक न सरै हम अपराधी निर्गुण आरे ना किस सेवा ना कर मारे गुर बोत वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवा कहूं बिहावै रंग रस रूप कहूं
1: राज मिलख वापारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाओ कहूं बिहावै वेद अरबाद कहूं बिहावै रसना साध कहूं बिहावै लपट संग नारी संत रचे न केवल नाम मुरारी काहूं बिहावै खेलत जुआ काहूं बिहावै अमली हुआ काहूं बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम ते आए काहूं बिहावै जोग तप पूजा काहूं रोग सोग परमीजा काहूं पवन धार जात बिहाए।

संत बिहावे हर जस गावत, काहू बिहावे नट नाटक निरते, काहू बिहावे जिया एह हिरते, काहू बिहावे राज मह डरते, संत बिहावे हर जस करते, काहू बिहावे मता मसूरत, काहू बिहावे सेवा जरूरत, काहू बिहावे सोदत जीवत, संत बिहावे हर रस पीवत।

राम कली महला पंजवा दावा अग्न रहे हर बूट मात गर्भ संकत ते छूट जाका नाम सिमरत पाओ जाए तैसे संत जना राखे हर राय ऐसे राखन दया ऐसे राखन हार दयाल जत कत देखो तुम प्रतिपाल रहाओ जल पीवत ज्यों तिखा मिटंत तन बिगसे ग्रह आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार

मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोयड़ा मेरा जानी अड़ा नैन अलोया घट घट सोया अत अमृत प्रिया गूड़ा नाल हवंदा लह न सकंदा सवा न जाने मूड़ा माया मद माता होछी बाता मिलन न जाई भरम धड़ा कह नानक गुरबिन नाही सूजे हर साजन सब कह निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राण अधारा मेरे गोबिंदा किरपाला मेरे किरपाला दान दतारा मेरे किरपाला दान दतारा अप्रपारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनों राखे सो सच पाखे गुर का शब्द बिचारा कहो नानक जो प्रभ को पाणा तिस ही को प्रभ प्यारा माणो प्रभ माणो मेरे प्रभ का माणो जानो प्रभ जानो स्वामी सुगड़ सुजानो सुगड़ सुजाना साध परधाना अमृत हर का नामा चाख अगाने सारंग पाने जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह त्याया सगल तिसे का माणो कह नानक थिर तख्त निवासी सच तिसे दी बाणो मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा आनंद बाजे शब्द गाजे नित नित जिसे बधाई सो प्रभ त्याई है सब किछ पाई है मरे ना आवे जाई चूकिया प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख निर्गुनिये कह कहो नानक कर प्रभ मेरे के नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याय मना खेन ना बिसारिये राम रामा राम रामा कंठ उर तारिये उर तार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख पाव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोबिंद विचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलख भंडार नाम अनंत तरा नाम नर हर निधान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा किल बिखारना नाम पुनः चरणा नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोय न जाने देख चलत दयाल सुन भगत बखानी जी जंत सब तुझ ते आवे जी जंत सब तुझ ते आवे पुरख पत परमेसरा सर्व जाचे एक दाता करुणा मैं जगदीसरा साधु संत सुजान सोई जिसह प्रभ जी मानी बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पछाने मोहे निर्गुण अनाथ सरणाई सरणी आया बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जल ने बुझाई सांताई मिले चिरी बिछुनिया आनंद हरख सहज साचे महा मंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुर पूरे ते पाया राम कली महला पांजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइए संतन कै किल बिख सब दोख बिनासन हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजे अमयों पीजे रैन दिन सराधिये जोगदान अनेक क्रिया लग चरण कमल है साधिये पौ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरे बिनवंत नानक तरे सागर त्याए स्वामी नर हरे सुख सागर गोबिंद सिमरण भगत गावे गुण तेरे राम आनंद मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निधान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर स्वामी अंत न पाइए गुणी है राम दयाल दुर्ख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो मोह सोग विकार विखड़े जपत नाम उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ माया की जय माया की जय नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भक्त जना अपनी चरणी लाए राम आठ पहर अपना प्रभ सिमरहो एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे पवजल रहे आवण जान।

सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाणा सब इच्छ पुनी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक आप मेले फिर नाही दुख बिसूरिया का राम कली महला पंजवां छंत सलोक चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गावा राम नानक प्रभ राधी है बिपत निवारण राम छंत प्रभ बेपत निवारणो तिस बिना वरना कोई जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोय जियो जल थल महियल पूर रहे एक निमख मनोना विसर गुर चरण लागे दिन सभागे सर्ब गुण जगदीसर कर सेव सेवक दिन सरैणी ज्यो भावे सो होय जियो बल जाए नानक सुख दाते प्रगास मंतन होय जियो रहाओ हर सिमरत मंतन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच छंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ दया प्रतिपाल जियो प्रतिपाल चुत पुरख एको तिसह स्यों रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अंदन जागा जियो पिंड ग्रह थान तिसका तन तन जोबन तन माल जियो सदा सदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतिपाल जियो रसलोक रसना उचर हर हरे गुण गोबिंद वखियान नानक पकड़ी ए टेक एक परमेश्वर रखे निदान छंत सो स्वामी प्रभ रख को अंचल ताके लाग जियो पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजे आसिक तरणी तरे साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे जन्म मरण बेकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो वल जाए नानक पुरख पूर्ण थिरका जाका सुहाग जियो रहाओ तारम अर्थ अर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ छंत सगल इच्छ मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो अंध पया बड़ भागी हो गृह प्रगटे प्रभ आए जियो गृह लाल आए पुरख पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहजदाता कवन रसना गुण पणा अप मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते समय रहा समाए जियो राग राम कली महला पंजमा रुन चुन डरा गाओ सखी हर त्याव हो सतगुर तुम सेव सखी।

जागत रहे स कबहु न सोवै तीनत लोक समाध पलोवै बीज मंत्र लै हृदय रहे मनवा उल्ट सुन मै गहे जागत रहे नालिया भाख है पांचो इंद्री बस कर राख है गुर की राखी गुर की साखी राख है चीत मन तन अर्पय कृष्ण परीत कर पल्लव साखा विचारे अपना जन्म न जुवै हाय असर नदी का बंधे मूल पश्चम फेर चढ़ावे सूर अजर जरह सो निजर जरह जगन नास्यो गोष्ठ कर चौमुख दीवा ज्योत द्वार पल्लु अनंत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन माणक रत्ना मंग है मस्तक पदम दवाल मणि माहे निरंजन त्रैपता पवन धनी पंच शब्द निर्मल बाज ढलके चवर संख कान गाज दल मल दे तो गुरम ज्ञान बेणी जाचै तेरा नाम राग नट नारायण महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत जोनी सह भंग गुर प्रसाद मेरे मन जप इनस नाम हरे कोट कोट दुख बोकीने सब पर हर पास तरे रहाओ हर हर नाम जपै आराध सेवक भाए खरे किलविख दोख गै सब नीकर जो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावै मुख बोले नर नर हरे पंच दोख असाध नगर मह एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्यावै हर के भगत हरे तिन की संगत देह प्रभ जाचो मैं मूढ़ मुक्त निस्तरे कृपा कृपा कतार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुर बचनी हर धारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम गोचर स्वामी जन जप मिल सरल सरले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले प्रखोतम हर नाम जन गायो सब दालथ दुख दलले विच देही दुख असाध पंच धातु हर की एखन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उन वे कन कन कन हर गरजै मन बिकसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मिलो आनंद पले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्याहो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीसर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सत गुर संग सखे जो चंदन संग बसे निम बिरखा जो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बस के हमरे अवगन बिखिया बिखे कै बो बार बार निमखे हमरे अवगन बिखिया बिखे के बो बार बार निमखे अवगन यारे पाथर पारे हर तारे संग जन के जनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप करिखे जन नानके दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीसर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम या ब्याए प्रभ सरन गे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम रखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को न उदरियो प्रभ किए पत तपाव गे गुण गावत शीपा दुष्टार्यो प्रभ राखी पैज जन गे जो तुमरे गुण गावे स्वामी ओ बल बल बल तिन गे पवन पवन पितर सब किए जय तूर परि जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे
जन नानक को दया प्रभ धारो हम सेवह तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे हर जन मेरे मन जाप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ तारी मत गुरमत ना बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने किल विख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह न सक हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बो बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तंदवे बांध्यो हर चेत्यो मुख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेसर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावै जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर परम पवने मेरे मन कल कल कीर्त हर परवने हर हर दयाल दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने ए परपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने जो सरले सरल उठे बैल बहु लहरी मिल सरले सरल समणे जो प्रभु किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बार कौर दारो हम करह प्रभु सिमरने तुम जल निध हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरी निरवाल सब दाल द भंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाओ हर का ग्रह हर आप सवारियो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयो हम हर गुर की है बसीठी हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आन दो आनंद पै हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पै गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत सुभवंती सुन अकथ कथा सुखवंती सब किल विख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीर्त कलयुग विच उतम मत गुरमत कथा भजंती जन जन सुनी मनी है जन जन ते जन के हो कुरबनंती हर अकथ कथा का जन रस चाख्या ते जन सब भूख लहंती जन नानक नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल ते सको हो बल बल बाल सो हर जान है पल पहल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्हा हर प्रभ जानो मेरे नाल जन नानक मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पांजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या पावै मन प्यास बहुत दरसावै रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवै कृपा करो जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद ध्यावै कवन जो कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनीरी जावै सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै साई मत साई बुद्ध सियानप जित निमख ना प्रभ बिसरावै संत संग लगे हो सुख पायो हर गुण तद सद ही गावै देखियो अचरज मंगल महामंगल रूप किश आन नहीं दिस टावै कहो नानक मोरचा गुर लाहियो ते गर्भ जोन कै आवै नट नारायण महला पांजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अलाहनो मैं काहू ना दियो
ਮਨ ਮੀਟ ਤਿਹਾਰੋ ਕੀਓ ਰਹਾਓ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਜਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੀਓ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਹਰ ਤੁਮ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜੀਓ ਜਬ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਇਹ ਬਾਤਾ ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸਿਓ ਅੰਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਬੀਓ ਨਾਟ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਾ ਕੋ ਪਈ ਤੁਮਾਰੀ ਧੀਰ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿੱਟੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਿਕਸੀ ਹੋਮੇ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਤਪਤ ਬਜਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਜਿਉ ਬਾਰਕ ਖੀਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਜਣ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਬੀਰਾ ਖੁੱਲੇ ਭਰਮ ਭੀਤ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲਾ ਹੀਰੇ ਬੇਦੇ ਹੀਰਾ ਬਿਸਮ ਪੈ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵਤ ਠਾਕਰ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ ਨਟ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਪੇ ਆਪ ਉਧਾਰਿਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਨਾਹੇ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰਹਾਓ ਵਰਨ ਚਹਿਨ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪੇਖਿਓ ਦਾਸ ਕਾ ਕੁਰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਹਰ ਦੀਓ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਵਾਰਿਓ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਅਗਨ ਕਾ ਸਾਗਰ ਤਹਿ ਤੇ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਿਓ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਖਸਾਨੋ ਪੁਨੇ ਪੁਨੇ ਬਲਹਾਰਿਓ ਨਟ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਹਿਓ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਖਨ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿਓ ਰਹਾਓ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਲਹਿਓ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹਿਓ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤ ਸੁਣਤੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਪਿਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਪਿਓ ਨਟ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰ ਪਰਮ ਗਤ ਮੋਰੀ ਰਹਾਓ ਅੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਨ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ ਜਸ ਗਾਵਤ ਭਗਤ ਰਸ ਉਪਜਿਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੀ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਆਨ ਨਾ ਪੇਖੋ ਹੋਰੀ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਬੂ ਥੋਰੀ ਨਟ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਨਰੈਣ ਕਬੂ ਨ ਬਿਸਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਠ ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਰਹਾਓ ਸਾਧੂ ਤੂਰ ਕਰੋ ਨਿਤ ਮਜਨ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਣ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਘਟ ਘਟ ਦਿਟ ਸਮਾਇਣ ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟ ਲੱਖ ਪੂਜਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਲ ਨਾ ਲਾਇਣ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ ਨਟ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮੇਰੇ ਸਰਬਸ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ ਰਹਾਓ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨੇ ਬਿਨ ਸਿਉ ਮੂੜ ਅਭਿਮਾਨ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ।

प्रताक गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म, ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे। जो जन चंद्र हांस दुखिया त्रेट बुद्धि, अपना कर लूकी जा रे। प्रभ को जन अंतर रिद लोचै, प्रभ जन के सास निहारे। कृपा कृपा कर भक्त दिरडाए, जन पीछे जग निस्तारे। अपने आप प्रभ ठाकर, प्रभ आपे श्रेष्ठ सवारे। जन नानक आपे आप सब वरतै, कर कृपा आप निस्तारे। नट मोहल्ला चौथा। राम कर कृपा लिहु उबहारे, जो पकर द्रौपदी दुष्टा आनी। हर हर लाज निवारे रहाओ, कर कृपा जाचक जन तेरे। एक मांगो दान प्यारे, सतगुर की नित सरदा लागी। मोको हर गुर मेल सवारे। साकत कर्म पानी जो मथिया, नित पानी झोल चुलारे। मिल सतसंगत परम पद पाया, कर्ण माखन के घटकारे। नित नित काया मजन किया, नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन न पाए, सब फोकट चार चिंगारे। मटक मटक चल सखी सहेली, मेरे ठाकर के गुण सारे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई, मैं सतगुर लख लखारे। नारी पुरख पुरख सब नारी, सब एको पुरख मुरारे। संत जना की रेन मन पाई, मिल हर जन हर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया, हृदय अंतर हर जन भारे। सरदा सरदा पाए मिलाए, मोको हर गुर गुर निस्तारे। पवन सूत सब नीका करिया, सतगुर शब्द विचारे। निज कर जाए अमृत रस पिया, मिलने ना जगत निहारे। तो गुण इस बार नहीं साको, तुम मंदिर हम निक कीरे। नानक कृपा करो गुर मेलो, मैं राम जावत मन तीरे। नट मोहल्ला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बो निर्गुण यारे। कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ, साधु पुरख साध जन पाए। एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो। राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिसना भूख निवारे। पचे पतंग मृग प्रिंकुंचर मीन, एक इंद्री पकर सघारे। पंच भूत सब लह देही, गुर सतगुर पाप निवारे। सातर वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे। राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे। मेर सुमेर मोर बोना चै, जब उनमें कन कन हारे। साकत को अमृत बो सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारे। जो जो निवे साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्ढे बेख खारे। संतन संत साध मिल रहिए, गुण बोले पर उपकारे। संत है संत मिले मन बिकसै, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्के हो, लोभ लहर सब स्वान हल्क है। हल्के हो सबे बिगारे, मेरे ठाकर कह दीवान खबर होई। गुर ज्ञान खड़ग लै मारे, राख राख राख प्रभ मेरे। मैं राखो कृपा धारे, नानक मैं तरे अवर न काई। मैं सतगुर गुर निस्तारे, छका एक। राग माली गौड़ा महला चौथा। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूरत अजूनी सह भंकुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया। हर अगम अगम अगाद बोध, आदेश हर प्रभ राया रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह, नित झगर ते झगराया। हम राख राख दीन तेरे, हर शरण हर प्रभ आया। शरणागति प्रभ पालते, हर भगत वछल नाया। प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया, हर राख लियो तराया। हर चेत रे मन महल पावन, सब दुख भंजन राया।
पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतद पावर नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर उर धारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुख दाता सतसंग तिहर सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाओ वड भागी हर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता दुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मन तन राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता राम रसायन जिन गुरमत पाया तिन की उत्तम बाता तिन की पंक पाए वडपागी जन नानक चरण पराता माली गौड़ा मोहल्ला चौथा सब सिद साधक मोन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर लाख गुरु लखायो रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो हर रायो हर आन मेल्यो सत गुरु खिन बंद मुख

मन टहल हर सुख सार अवर टहलना झूठिया नित कर जम सिर मार रहाओ जिन्हा मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार भौजल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक भरम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव न सो होया को न मेटन हार अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार तन तन तेजन नानका जिन हर नामा और तार माली गोड़ा मोहल्ला पांजवा राम नाम को नमस्कार जास जापत होवत उधार रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद जाके सिमरन छूटे बंद जाके सिमरन मूर्ख चतर जाके सिमरन कुले उदर जाके सिमरन पौ दुख।